सुनबो महाराज करीब सांब सदाशिव जी को रुद्र गीत नाम को प्रकाश करने वहाँ का दस भाई स्वर दस भाई को एक कन्या को साथ को विवाह प्रकरण यो बनी मैं अभी नहीं बताई सके छु दक्ष नागर को प्रजापति पर उनका कुल मागे जन्म लिखा छ दक्ष नाम को प्रजापति ने बोका को शिर भैया चियालाई त्यागे अरे दक्ष नाम को राजा भर जन्मन इन दक्ष नागर को राजा को उपाख्यान अब पीछे भोलि शस्त्र स्तंभ को बीच में गए प्रस्तुत होने इन्हें दक्ष नागर को महाराज को वर्णन विस्तार को वर्णन बोले शस्त्र स्तंभ में महाराज परीक्षित सुखदेव स्वामी ने संबोधन करू प्रत्येक दस प्रचेता ये दस ही प्रचेता ने भगवान शाम मसदा शिवजी अत्यंत प्यारसंग भगवान शिवजी को विनती करते कैला सैमा शिवजी छन छन दर्शन चिंतन जमुई

प्रसादिताय नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र।

0: दसैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सर्फ एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जडान, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दसैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।
1: यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्क को। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर।
2: काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एन आर्यन 99.1 ठाउँ ठाउँका रेडियो
0: बजट। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सर्फ एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जडान, साथै 0% ब्याज